दसैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्म को बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जड़ा, साथ ही 0% ब्याज में सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपाली को उत्सव दसैं तिहार को एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।

0: रेडियो आदि खुला 105.4
1: विजया दशमी 2083 को इस पावन अवसर में हमारा शेयर सदस्य विज्ञापनदाता श्रोतागण शुभेच्छुक एवं देश तथा विदेश में रहन भएका संपूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। शान्ता थापा अध्यक्ष, तुलाकान्त बगाले स्टेशन म्यानेजर एवं रेडियो आदिखोला एफएम 105.4 मेगाहर्ज परिवार वालिङ आठ ग्याङलिङ सेङ्ग।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: श्याम धीराज मल्ल संयोजक एवं वीआईपी टोल टोल विकास संस्था परिवार वालिङ आठ आफ्नो टोल सफा राखौं टोलवासीको परिचय दिउं साथै पैदल यात्रा महानुभावले फुटपाथको प्रयोगमा ध्यान दिनुभए सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग गरौं।

0: रेडियो आदिखोला 105.4
1: विजया दशमी 2083 को इस पावन अवसर में हमारा शेयर सदस्य विज्ञापनदाता श्रोतागण शुभेच्छुक एवं देश तथा विदेश में रहन्भएका संपूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। शान्ता थापा अध्यक्ष, तुलाकान्त बगाले स्टेशन म्यानेजर एवं रेडियो आदिखोला एफएम 105.4 मेगाहर्ज परिवार वालिङ आठ ग्याङलिङ स्याङ्जा।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: नन्दलाल खनाल नगर सभापति एवं नेपाली कांग्रेस बिरकोट नगर समिति परिवार।

0: नेपाली हरुको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को आर्थिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: शंकर जुमरी अध्यक्ष होमकान्त गौतम प्रिंसिपल तथा कैंपस प्रमुख एवं मिराकल एजुकेशन एकेडमी नेपाल आदर्श मावि तथा नेपाल आदर्श कैंपस वालिङ आठ भीमतारी
2: गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो प्रतिबद्धता।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: घनश्याम सुवेदी गाउँपालिका अध्यक्ष, देवकुमारी गुरुङ उपाध्यक्ष, विष्णु प्रसाद पोखरेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं फेदीखोला गांव कार्यपालिका को कार्यालय फेदीखोला।

0: सुनोस ना, आइले हम लोग आने में 8 बजे का छा
1: समय को साथ में जेतु सुनसादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़ 5 घरेता कुना को लाइन जैसी 15 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।

0: रेडियो आधी खुला 105.4
1: विजया दशमी 2083 को इस पावन अवसर में हमारा शेयर सदस्य विज्ञापनदाता श्रोतागण शुभेच्छुक एवं देश तथा विदेश में रहन्भएका संपूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। शान्ता थापा अध्यक्ष, तुलाकान्त बगाले स्टेशन म्यानेजर एवं रेडियो आदिखोला एफएम 105.4 मेगाहर्ज परिवार वालिङ आठ ग्याङलिङ सेङ।

0: नेपाली हरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा सीहर सदस्य संचालक समिति सेवाग्राही लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: महेश कुमार गौतम शाखा प्रमुख प्राइम कमर्शियल बैंक वालिङ। संपर्क फोन नंबर 0367414

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हाम्रा पालिकावासी बुवा आमा दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: तुलसीराम रेग्मी नगर प्रमुख, देवी अरियाल उप प्रमुख, प्रदीप चन्द्र सुवेदी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं पुतली बजार नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय पुतली बजार स्याङ्जा।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: शेरबहादुर श्रेष्ठ अमृत ओडा अध्यक्ष एवं वालिङ नगरपालिका ओडा नम्बर 9 ओडा परिवार।
2: विवाह जन्म मृत्यु बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक घटनाहरू 35 दिन भित्रै सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा दर्ता गरौं।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भाई संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: कृष्ण खाड नगर प्रमुख, कविता तिवारी गैरे उप प्रमुख, जीवन गेवाली प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं वालिङ नगर कार्यपालिका को कार्यालय वालिङ स्याङ्जा।

विजया दशमी 2083 को इस पावन अवसर में हमारा शेयर सदस्य विज्ञापनदाता श्रोतागण शुभेच्छुक एवं देश तथा विदेश में रहन्भएका संपूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। शान्ता थापा अध्यक्ष, तुलाकान्त बगाले स्टेशन म्यानेजर एवं रेडियो आदिखोला एफएम 105.4 मेगाहर्ज परिवार वालिङ आठ ग्याङलिङ स्याङ।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहक वर्ग, शुभचिन्तक, इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रोप्राइटर लक्ष्मण अधिकारी, सफल फर्निचर उद्योग, वालिङ सुन्दर बजार, वालिङ 1 राममाछा शोरूम, बिरकोट 1 बैरघारी मेन रोड, वालिङ 8 मोड नगरपालिका जाने बाटोमा, मोबाइल 9856309888।
2: हामी कहाँ आधुनिक डिजाइन का आकर्षक सोफा, पलंग, दराज, ड्रेसिंग टेबल तथा काठबाट निर्मित सम्पूर्ण सामग्री पाइन का साथ ही अर्डर अनुसार आधुनिक डिजाइन का फर्निचर एवं फर्निशिंग का सामान सुपथ मूल्य में उपलब्ध।

0: नेपाली हरुको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा ग्राहक वर्ग शुभ चिंतक इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजू भाई तथा दीदी बहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोप्राइटर भरतराज भट्टराई, सहारा एग्रोवेट सेन्टर, वालिङ आठ कटहर बोर, एसबीआई बैंक को अगाडि। सम्पर्क मोबाइल 9857062866 र 9847029।
0: हामी कहाँ उन्नत बिउ बिजन, मल, विषादी, पशु औषधि, कृषि उपकरण, पशु पक्षीहरूका लागि दाना, साथै बोइलर, कोइलर, कुखुराका चल्लाहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अर्जुन प्रसाद खनाल सभापति एवं नेपाली कांग्रेस स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 क्षेत्रीय परिवार।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रकाश तिवारी गाउँपालिका अध्यक्ष, सपना गुरुङ उपाध्यक्ष, युवराज अर्याल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं अर्जुन चौपारी गांव कार्यपालिका को कार्यालय अर्जुन चौपारी।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: गोविन्द कुमार कर्मचारी नगर प्रमुख, भगवती अरियाल उप प्रमुख, अनिता पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं बिरकोट नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बैरघारी साइंजा।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: नुवा दत्त अर्याल अध्यक्ष एवं भिरकोट उद्योग वाणिज्य संघ परिवार भिरकोट स्याङ्जा।
2: आफ्नो व्यवसाय सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरौं, उपभोक्ता मैत्री व्यापार व्यवसाय गरौं।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहन् भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: देवबहादुर खान ईश्वर प्रमुख, ईशा राणा उप प्रमुख, ज्ञानराज कोइराला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं सापाकोट नगर कार्यपालिका को कार्यालय संजा।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजू भाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: गुरुप्रसाद भट्टराई नगर प्रमुख हेमान्य उपाने उप प्रमुख युवराज अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं गल्याङ नगर कार्यपालिकाको कार्यालय गल्याङ स्याङ्जा।

0: टीवी खोला, उसके पास छुपलो चार आपने ख्याल रख ली सही।
1: रेडियो आदि खोला,
2: रेडियो आदि खोला 105.4।

विजया दशमी 2083 को इस पावन अवसरमा हाम्रा शेयर सदस्य विज्ञापनदाता श्रोतागण शुभेच्छुक एवं देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। शान्ता थापा अध्यक्ष, तुलाकान्त बगाले स्टेशन म्यानेजर एवं रेडियो आँधीखोला FM 105.4 MHz परिवार वालिङ 8 ध्यानलिन सैन्य।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भाई संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सबिता कोइराला कार्यवाहक अध्यक्ष बेसराज आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं कालीगंडकी गांव कार्यपालिका को कार्यालय बिरघा।

0: नेपाली को महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा ग्राहक वर्ग शुभ चिंतक इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहिनी सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभ कामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोप्राइटर जीवन थापा, हाम्रो टेलरिंग सेन्टर वालिङ आर्ट मल्ल फार्मेसी को अगाडि। सम्पर्क मोबाइल 9841614310 र 9844247090।
2: हामी कहाँ कोट पाइन्छ, दौरा सुरुवाल स्कर्ट इष्ट कोट बनाउनका साथै रेडीमेड पनि पाइन्छ। साथै यहाँ वालिङ बहुमुखी क्याम्पस, नेपाल आदर्श क्याम्पस, प्रणामित भवानी मावि, राष्ट्रिय मावि, आन्धाली, सगरमाथा बाल विद्या स्कूल का साथै बैंक तथा विभिन्न संघ संस्था का ड्रेस लगायतका सम्पूर्ण क्याम्पस एवं स्कूल का ड्रेसहरू उपलब्ध गराइन्छ। ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो चाहना।

0: विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: विश्वनाथ पौडेल अध्यक्ष, सीता थापा उपाध्यक्ष, सुशील कुमार आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं आदिखोला गांव कार्यपालिकाको कार्यालय कृषि सैंजा।

0: नेपाली हरुको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा ग्राहक वर्ग शुभ चिंतक इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली दाजू भाई तथा दीदी बहनी सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोप्राइटर बालकृष्ण सुवेदी र गीता सुवेदी, डीएनवाई जनरल स्टोर, सुवेदी तेल एण्ड कुटानी पिसानी उद्योग, वालिङ आठ बीपी चोक। सम्पर्क मोबाइल 9856054313 र 9814134332।
0: हामी कहाँ शुद्ध तोरीको तेल पाइनुका साथै लोकल गहुँको पिठो, लोकल चामल र पिना पनि सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अर्जुन प्रसाद खनाल सभापति एवं नेपाली कांग्रेस स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 क्षेत्रीय परिवार।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दासुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रकाश तिवारी गाउँपालिका अध्यक्ष, सपना गुरुङ उपाध्यक्ष, युवराज अर्याल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं अर्जुन चौपारी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अर्जुन चौपारी।

0: नेपालीहरुको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा ग्राहक वर्ग शुभ चिंतक इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका संपूर्ण नेपाली दाजू भाई तथा दीदी बहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: ग्रुप राइटर भगवान सुनार, भगवान बुद्ध सुनचारी पसल, वालिङ आर्ट पीपल बोर्ड, सम्पर्क मोबाइल 98565510।
0: हामी कहाँ आधुनिक डिजाइन का सुन र चाँदी का गहना तैयार गर्नुका साथै पुराना सँग नयाँ गहना साटफेर गरिन्छ। साथै राशि अनुसार को पत्थर राखेर औठी पनि तैयार गरिन्छ।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हाम्रा पालिकावासी बुवा आमा दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: गोविन्द कुमार कर्मचारी नगर प्रमुख, भगवती अर्याल उप प्रमुख, अनिता पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं बिरकोट नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बैरघारी सैंजा।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: नुवा दत्त अर्याल अध्यक्ष एवं बिरकोट उद्योग वाणिज्य संघ परिवार बिरकोट स्याङ्जा।
2: आफ्नो व्यवसाय सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरौं, उपभोक्ता मैत्री व्यापार व्यवसाय गरौं।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिका वासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहन् भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तर उत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सूर्य बहादुर कुंवर अध्यक्ष, भगवती शर्मा उपाध्यक्ष, परशुराम उपाध्याय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं बिरुवा गांव पालिका गांव कार्यपालिका को कार्यालय बिरुवा साइन।

विजया दशमी 2083 को इस पावन अवसर में हमारा शेयर सदस्य विज्ञापनदाता श्रोतागण शुभेच्छुक एवं देश तथा विदेश में रहन् भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। शान्ता थापा अध्यक्ष, तुलाकान्त बगाले स्टेशन म्यानेजर एवं रेडियो आदिखोला एफएम 105.4 मेगाहर्ज परिवार वालिङ 8 घ्याङलिङ स्याङ्जा।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: दामोदर तिवारी ओडा अध्यक्ष एवं वालिङ नगरपालिका ओडा नम्बर 8 परिवार।
2: विवाह जन्म मृत्यु बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक घटनाहरू 35 दिन भित्र सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा दर्ता

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा सियर सदस्य संचालक समिति सेवाग्राही लगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष सुरज प्रताप खाँड, सचिव आनन्द कुमार खाँड, प्रबन्धक दया प्रसाद तिवारी एवं दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड वालिङ नौ सैंजा। सुरक्षित बचत तथा आकर्षक ब्याज दर का लागि हामीलाई सम्झनुहोस्।
2: रेडियो आदिखोला 105.4

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: दिपेन्द्र केसी ओडा अध्यक्ष एवं भिरकोट नगरपालिका ओडा नम्बर 1 ओडा परिवार।
2: विवाह, जन्म, मृत्यु, बसाई सराई, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक घटनाहरू 35 दिन भित्रै सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा दर्ता गरौं।
3: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहन भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
4: दीप गुरुङ छिरिङ ओडा अध्यक्ष गल्याङ नगरपालिका ओडा नम्बर 5 एवं ओडा परिवार।
1: विवाह, जन्म, मृत्यु, बसाई सराई, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक घटनाहरू घटेको 35 दिन भित्रै सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता गरौं।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हाम्रा पालिकावासी बुवा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: गुरू प्रसाद भट्टराई, नगर प्रमुख हेमान्य उपाने, उप प्रमुख युवराज अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं गल्याङ नगर कार्यपालिकाको कार्यालय गल्याङ सेङ्जा।

0: नेपाली हरुको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा ग्राहक वर्ग शुभ चिंतक इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहन् भएका संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहनी सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोप्राइटर चन्द्रबहादुर गुरुङ, गुर्खाली तरकारी फलफूल तथा किराना पसल वालिङ 8 मोडबाट माथि अर्गानिक फोर ल्यान्डको ठीक अगाडि। मोबाइल 9815848178।
2: हामी कहाँ स्थानीय स्तरमा उत्पादित ताजा ताजा तरकारी एवं फलफूलहरू होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा बिक्री गर्नुका साथै किराना सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीहरू पनि सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ।
3: रेडियो आदिखोला 105.4

0: नेपाली हरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में सवारी चालक सहचालक यात्रुवर्गहरू यातायात व्यवसायीहरू लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: पास्टर गुरुङ, अध्यक्ष कुमार गुरुङ, कार्यालय प्रमुख एवं निर्दय यातायात प्रणाली, सम्पर्क मोबाइल 9855 54162। सुरक्षित तथा आरामदायी यात्रा को लागि हामीलाई सम्झनुहोस्।

0: नेपालीहरुको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा ग्राहक वर्ग शुभ चिंतक इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहन भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोप्राइटर दिनेश श्रेष्ठ एक्सटेप र एडिडास को आधिकारिक विक्रेता न्यू ब्रदर्स फ्रेन्सिस स्टोर्स वालिङ 8 बगाली मोबाइल 9841684305।
0: हामी कहाँ विभिन्न ब्रान्ड का लेटेस्ट जेन्स कपड़ा जुत्ता चप्पल लगेज तथा ब्याग उपलब्ध छन्। साथै लेविस नाइक पुमा को ओरिजिनल उत्पादन खोजी रहनु भएको छ भने एक पटक अवश्य भिजिट गर्नुहोला न्यू ब्रदर्स फ्रेन्सिस स्टोर।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हाम्रा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: घनश्याम सुवेदी गाउँपालिका अध्यक्ष, देवकुमारी गुरुङ उपाध्यक्ष, विष्णु प्रसाद पोखरेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं फेदीखोला गांव कार्यपालिका को कार्यालय फेदीखोला।

0: रेडियो आदि खुला 105.4
1: विजया दशमी 2083 को इस पावन अवसर में हमारा शेयर सदस्य विज्ञापनदाता श्रोतागण शुभेच्छुक एवं देश तथा विदेश में रहन् भएका संपूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। शान्ता थापा अध्यक्ष, तुलाकान्त बगाले स्टेशन म्यानेजर एवं रेडियो आदिखोला एफएम 105.4 मेगाहर्ज परिवार वालिङ 8 ग्याङलिन स्याङ।

0: नेपालीहरूको महान चाड़ विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: रत्न प्रकाश चर्च ओडा अध्यक्ष एवं भिरकोट नगरपालिका ओडा नम्बर 4 परिवार।
2: विवाह जन्म मृत्यु बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक घटनाहरू 35 दिन भित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अर्जुन प्रसाद खनाल अध्यक्ष एवं शिव पार्वती वृद्धाश्रम तथा बहुद्देश्य संस्था परिवार वालिङ दश भकुण्डे गलेङ एक रामदी
2: ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा अमूल्य सम्पत्ति तथा अभिभावक हुन्, तसर्थ सबैले सम्मान गर्ने बानी बसालौं।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: श्याम धीराज मल्ल संयोजक एवं वीआईपी टोल टोल विकास संस्था परिवार वालिङ आठ आफ्नो टोल सफा राखौं टोलवासीको परिचय दिउ साथै पैदल यात्रा महानुभावले फुटपाथको प्रयोगमा ध्यान दिनु भए सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग गरौं।

0: नेपाली हरुको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहन भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सुनील खनाल वडा अध्यक्ष एवं वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 10 परिवार।
2: विवाह जन्म मृत्यु बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक घटनाहरु 35 दिन भित्रै सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता गरौं।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: याम प्रसाद अधिकारी प्रदेश सभापति नेपाली कांग्रेस संसद क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहक वर्ग, शुभचिन्तक, इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रोप्राइटर लक्ष्मण अधिकारी, सफल फर्निचर उद्योग, वालिङ सुन्दर बजार, वालिङ 1 राममाछा शोरूम, भिरकोट 1 बैरघारी मेन रोड, वालिङ 8 मोड नगरपालिका जाने बाटोमा, मोबाइल 9856309888।
2: हामी कहाँ आधुनिक डिजाइन का आकर्षक सोफा, पलंग, दराज, ड्रेसिंग टेबल तथा काठबाट निर्मित सम्पूर्ण सामग्री पाइन का साथ ही अर्डर अनुसार आधुनिक डिजाइन का फर्निचर एवं फर्निशिंग का सामान सुपथ मूल्य में उपलब्ध।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: कल्पना तिवारी, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस एवं सांसद गण्डकी।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रकाश तिवारी गाउँपालिका अध्यक्ष, सपना गुरुङ उपाध्यक्ष, युवराज अर्याल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं अर्जुन चौपारी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अर्जुन चौपारी।

0: नेपाली हरुको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा ग्राहक वर्ग शुभ चिंतक इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहन् भएका संपूर्ण नेपाली दाजु भाई तथा दीदी बहनी सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभ कामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोप्राइटर यज्ञ प्रसाद अधिकारी, अधिकारी ब्रदर्स हार्डवेयर एवं मेसिनरी स्टोर वालिङ 8 केदारनाथ मार्ग, सम्पर्क फोन नम्बर 0364142094 र मोबाइल 98560289494।
2: हामी कहाँ विश्व प्रसिद्ध कम्पनी कजारिया ब्रान्डको ग्रेनाइट मार्बल बाथरूम धाराहरू, उत्कृष्ट ब्रान्डका कम्बोर्डहरू, छड सिमेन्ट लगायतका निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको व्यवस्था समेत रहेको जानकारी गराउँदछौ।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहन्भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: गोविन्द कुमार कर्मचारी नगर प्रमुख, भगवती अरियाल उप प्रमुख, अनिता पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं बिरकोट नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बैरघारी साइजा।

0: सुनिए सुना अहिले हाम्रो गर्नेमा
1: समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़ पांच गड़े कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
2: रेडियो आधी खोला 105.4

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: गुरुप्रसाद भट्टराई नगर प्रमुख हेमान्य उपाने उप प्रमुख युवराज अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं गल्याङ नगर कार्यपालिकाको कार्यालय गल्याङ सेङ्जा।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: दिपेन्द्र केसी ओडा अध्यक्ष तथा नगर प्रवक्ता एवं भिरकोट नगरपालिका एक नम्बर ओडा कार्यालय परिवार
2: विवाह जन्म मृत्यु बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक घटनाहरू 35 दिन भित्रै सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा दर्ता गराउँछौं।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: गरमसुर धार्मिक तथा पर्यटकीय केन्द्र वालिङ गल्याङ।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजू भाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भाई संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: सावित्रा कोइराला कार्यवाहक अध्यक्ष बेसराज आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं कालीगंडकी गांव कार्यपालिका को कार्यालय बीर्घ।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: केशर बहादुर खड्का ओडा अध्यक्ष एवं भिरकोट नगरपालिका ओडा नम्बर 3 परिवार।
2: विवाह जन्म मृत्यु बसाई चराई सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक घटनाहरू घटेको 35 दिन भित्रै सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा दर्ता गर।

विजया दशमी 2083 को इस पावन अवसर में हमारा शेयर सदस्य विज्ञापनदाता श्रोतागण शुभेच्छुक एवं देश तथा विदेश में रहन्भएका संपूर्ण नेपालीहरू

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: नन्दलाल खनाल नगर सभापति एवं नेपाली कांग्रेस बिरकोट नगर समिति

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहक वर्ग, शुभ चिन्तक, इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रोप्राइटर लक्ष्मण अधिकारी, सफल फर्निचर उद्योग, वालिङ सास सुन्दर बजार, वालिङ एक राममाछा शोरूम, भिरकोट एक बैरघारी मेन रोड, वालिङ 8 मोड नगरपालिका जाने बाटोमा, मोबाइल 98560309888।
2: हामी कहाँ आधुनिक डिजाइन का आकर्षक सोफा, पलंग, दराज, ड्रेसिंग टेबल तथा काठबाट निर्मित सम्पूर्ण सामग्री पाइन का साथ ही अर्डर अनुसार आधुनिक डिजाइन का फर्निचर एवं फर्निशिंग का सामान सुपथ मूल्य में उपलब्ध।

को अवसर साथ ही हर एक महीना होने भाग्यशाली उपहार आइडिया को साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर जितने मौका साइड बाई साइड र मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर किन्दा इंडक्शन निःशुल्क फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी टॉप लोड में 4 केजी र सेमी ऑटोमेटिक में 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल निःशुल्क डिश वॉशर किन्दा 2 वटा वॉशिंग टैबलेट निःशुल्क आइडिया दसैं को खुशी घर घर में उपहार।